0: पोलो एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोनी एफएम स्टुडियो टाइम
2: 10 एम बिहानको 10 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारामाई अफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: Rádio Insolo é tempo.
1: Solo FM 101.2 MHz.
2: उज्जवल भविष्य को लागी हम लोग अभियान
3: संचय सोलो एफएम स्टूडियो टाइम
4: कल भोल मध्यान को 12 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माय ऑफसेट प्रेस सोलो दुतुन नगर पालिका 5 सोलो कुंडू

0: मेलापात घर तथा घर घर में तपाईको साथ
1: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: मादल का जोइना दाए भूले पानी है मादल का जोइना
3: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज

As it becomes somewhat dear that the Astral also met Kati Sundar on his Kitaturus and Sunday that for this October past day, Neta Sumatigar Sisari, the Summititi, Tishan, the Sutra Sibayo, the Tarus on the map of Katrasima, the Tasan, as it is that good rumors that he made Matri, the Ekunis of Alis and the Savozira, so much news and that he was the Hunisa. अवरोध आनु को राखी पड़ता को सुरात मारे कुछ तो मेष्टा सिलाया काम पारंभ करने समय से मेरे बच्चे दिखो फायदा दिलाने से पक्की स्पर्धी हो गई हार खाने से ना ब्रिस्टा की सम पर अपने सूची को मुझे प्राप्त होना सक्षर आपको कमजोरी को फायदा अंडी उठाना सक्षर ना मिथुन राशि उन्हें कराया कि आज के दिन परिवेश लक्ष्मी रहे पनी जीवन सभी व्यस्त रहे सब प्रतिष्ठित काम बढ़ा नाम रुदाम कमाने बिलास कर कर राशि खर्च बनाने अथवा देखा पड़ा सक्षर आपने स्वामित्व का वस्तु ना और उन्हें दावी करना सक्षर ना सिंह राशि उन्हें कराया कि आज के दिन आमदनी का विभिन्न स्रोत देखा पड़ा सूची को फायदा न होना सक्षर लगनी तरफ लागत बढ़ने से कन्या राशि लामा समय देखी प्रतीक्षा करी काम सुधार रखने से आपको क्षेत्र में प्रभाव जमाने सकने से तुला राशि काम खालना समय लगे पर संभावना खुशी करने समय से शुभ चिंता खुल को सद्भाव कायम राखना सजग रहने पड़ने से वृश्चिक राशि उमेर का राखी आज को दिन आमदानी रोकना कहीं योजना भी रोकन सकता भोलि का समस्या जोड़ना अलमल पड़ने धनु राशि भौतिक साधन जीवनशैली में परिवर्तन ल्यान सकता परिवार संकुशा उत्साह जगाउने मकर राशि उनीहरूका लागि आजको दिन रोकिएका काम बढ्नुका साथै नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ व्यवसायिक काममा राम्रो फलको पार्न सकिनेछ कुम्भ राशि परिस्थिति बढी आएको काममा विलम्ब हुनेछ अवसरले पछ्याए पनि फाइदा उठाउन चुनौतीसँग जुझ्नु पर्नेछ तपाईँको राशिफलको अन्तिममा रहेको शनि राशि साझेदारीमा देखिने समस्याले सम्झौता भङ्ग हुन सक्छ काम बिग्रिने डरले सताइ